0: लाङथाङ नाम्लो लिज्याउ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बने हो मि ढाल्ले छ अनुगमन दुने व्यवस्था चाउसङ्की दुए
1: गेछो छामेला खोरेल चाउसी पोलिए हरिदे तरिम गाई गेजम हेके लाइजु अब नजिरे बनाए गेम एल गेजम हेके मालाए औले लायो के माइए
0: वन जङ्गल छ जुलिसियो घेङबारी ल बाली नाली चिउला चिउली झ्याक्रा र सताउसो छिमी ने चाउसो सैरेके खेले यहाँ
1: वन जङ्गल मेला के माइए
0: कार्यालय प्रहरी कार्यालय सहज सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका कार्यालय खबर गिरिए
1: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा